ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नेहा बेनीवाल आपके साथ रहेंगी। सुबह 7:05 पर भावना नैयर के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली शहर की जानकारी आप सुनेंगे और साथ ही साथ अन्य जानकारी भी आप सुन पाएंगे गीत संगीत के साथ। सुबह 8:00 नेहा बेनीवाल आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। भावना नैयर आपके लिए लाएंगी कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने सुबह 9:00। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और साथ ही साथ कुछ पुराने गीत। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसमें अदिति बिष्ट आपके साथ होंगी। इस कार्यक्रम में आप इंग्लिश गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 11:05 पर ज्योतिका सिंह आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड जगत की खबरों का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। दोपहर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्लेट कूल का समय रहेगा, इसमें अदिति बिष्ट आपके लिए कार्यक्रम लेकर आएंगी। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, इसमें ज्योतिका सिंह आपके साथ रहेंगी और आज का विषय रहेगा ड्रग एडिक्शन। दोपहर 2:00 का समय रहेगा कार्यक्रम आशियाना का और साथ में इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरोग्य पथ शीर्षासन पर भी जानकारी, कंचन कनन इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। दोपहर 3:00 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, ये फोन इन कार्यक्रम है, शैली भसंजना इसमें आपके साथ रहेंगी। इसमें विषय रहेगा डीलिंग विद ऑस्थराइटिस का, इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर दीपक जोशी। शाम 4:05 का कार्यक्रम रहेगा अल्फा जैन का, कंचन कनन इसमें आपके साथ रहेंगी। शाम 5:05 पर शैली आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे रामा यादव के साथ कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं और साथ ही साथ संदेश भी भेज सकते हैं। शाम 7:05 का समय रहेगा अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक यू आस्क्ड फॉर इट, इस कार्यक्रम में लिपिका दास आपके साथ रहेंगे। रात्रि 8:00 का समय रहेगा कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती का, इसमें आप नॉनस्टॉप डांस हिट्स का मजा ले सकते हैं, रामा यादव इसमें आपके साथ होंगी। रात्रि 9:00 का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी याद आती रही मुक्ति सैनी के साथ, इस कार्यक्रम में आप 90s के गीतों का मजा ले सकते हैं।
1: Good morning, this is Akashvani Kohima, FM Tragopan at 103 MHz. Today is Tuesday, the 16th of July, 2026. The time right now is 6 o'clock. We now begin our first transmission.
2: FM Tragopan.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी

0: ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9

0: और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George,

0: Alright, we have good morning RJV, namaskar listeners Durgesh Nagin Pure, Radhe Shyam Nagin Pure, Vandana Bhavna, Bindu Golu Kusumbai Babu Divyanj aur Suraj Kumar Dakshe, Suraj Verma, Rishabh Khanak aur Bhavna Verma, Premlal Verma, Nikesh Dharmendra aur Mamta Bhai Verma. दुर्गेश जी आपका बहुत बड़ा परिवार है और लगता है बहुत सुंदर परिवार भी है. इतना प्यार से रहते हैं आप लोग. बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी के नाम लिखकर भेजते हो. मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ जाएगा. और जी हाँ, आपका जो शायरी का अंदाज़ है, एक प्यारा सा शायरी एक हो जाए दुर्गेश जी, प्यारा सा एक शायरी जल्दी से भेज दीजिए, है ना. और शो पर चांद चांद लगा दीजिए. यस माय डियर लिसनर्स, लुक्स लाइक वी आर कीपिंग द एनर्जी लेवल्स हाई दिस मॉर्निंग. ऑलराइट, इफ यू हैव बीन टैपिंग योर फीट, सिंगिंग अलोंग और मे बी इवन डूइंग अ लिटिल डांस व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, दिस नेक्स्ट ट्रैक इज फॉर यू. इट्स पैक्ड विद इन्फेक्शियस एनर्जी एंड द काइंड ऑफ बीट दैट इंस्टेंटली लीव्स योर मूड. कमिंग अप नाउ, हियर्स Fire Burning by Sean Kingston. Let's keep the party going on FM Dragoban at 103 megahertz.
1: Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa.
2: Esto para todas las mujeres que están en candela. Baby, you on fire. Sean Kingston.

0: ऑलराइट दुर्गेश जी, फिर से लिखते हैं आरजेवी। 3 दिन से एफएम ट्रकोबैन का सर्वर डाउन हो गया था, हमको बहुत बुरा लगा। हम आपको मैसेज एसएमएस नहीं भेज पाए जी, लिखते हैं दुर्गेश जी। जी हाँ दुर्गेश जी, हमें भी बहुत बुरा लगा था कि आपसे वार्तालाप नहीं हो पाई, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर 3 दिन के बाद वापस फिर आपका प्यार पाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। महसूस हो रहा है कि वापस सब कुछ ठीक हो गया। जैसे ही हम सोचते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही नहीं रहता। कुछ बुरा वक्त होता है और कभी-कभी हमें दुख से भी गुजरना पड़ता है, तो उसी उस जैसा ही है ना। एक बुरा सपना मान लीजिए, हमारा जो नेटवर्क खराब हुआ था, है ना, और अभी खुशी खुशी एक साथ चलते हैं, बढ़ते हैं, और आपका मैसेजेस रुकना नहीं चाहिए। लिसनर्स भेजिए आपका अपने अपने संदेश। ऑल राइट, और यहाँ पे लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजेवी, बिग सलाम, हाउ आर यू लिसनर्स, निमाडी बॉय एंड निमाडी गर्ल। निमाडी बॉय एंड गर्ल, थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ, जकासू, आई एम डूइंग रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। आई होप आप दोनों भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग एफएम फैमिली, सुर रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवदी से। ग्राम जसवदी से जितने भी हमारे लिसनर्स अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और यस, बढ़ते हैं दूसरे गीत की तरफ। दिस इज ब्यूटिफुल गर्ल्स।
1: Jay, y'all, Sean Kingston. Yo.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली एंड ऑसम लिसनर्स, अब निखन सबके प्रोग्राम में स्वागत करिए से आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रगुबान 103 मेगाहर्ट्ज़ ते अब निखन लगा होस्ट और दोस्त आरजे तिमजन लगो दे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल प्रेजेंटेशन मेहनत का सलाम A tribute to the workforce. Ami kan sob yate celebrate kori hobo. Aji Rumani geet yate ani diyeche. And this playlist is dedicated to the workforce. I mean, those people who are involved in making our country move ahead. Today we celebrate the millions of hardworking people whose dedication keeps our communities, industries and nation moving forward. From construction workers and farmers to the factory workers, drivers, tea carton workers, technicians, artisans and countless other workers. Every task they perform contribute to building a stronger future of the nation. So my dear friends, for the next about 43 minutes, we will be enjoying this inspiring Bollywood songs filled with hope, determination and the spirit of perseverance. Along the way, we will share some interesting trivia and reflect on the invaluable contribution of workforce to our society. So, I'm going to start with the first song, Huniyabo Bhak Milka Bhak Filmbra Siddharth Mahadevan. It's a very powerful song that I'm going to start with. Music, this is Shankar Ishanuraloy. Lyrics, Prasun Joshi.

0: Well, we have another message. और लिखते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, वन ऑफ माई फेवरेट आरजे वेरोनिका. हम लोग गुजरात में हैं, अभी निकलने ही वाले हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं. लेकिन देखते हैं, टू मच फॉग और बारिश, एंड यहाँ वन ऑफ माई सिम BSNL तो नेटवर्क अच्छा ही नहीं है, तो क्यों आपकी FM ट्रकोपन का ख़राब हुआ. एनी वेज, हैव अ ग्रेट आवर्स अहेड फ्रॉम अकूज. वेल अकूज, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन गुजरात? गुजरात में क्या कर रहे हो? ढोकला खा रहे हो जाके गुजरात में, या काम कर रहे हो? एनी वेज, कोहिमा में भी निकाय ऐसे वेदर इज सो फॉगी. आज तो आई थिंक इट्स बीन प्रिडिक्टेड दैट रेन इज गाना कंटिन्यू फॉर सम फ्यू डेज. तो आई डोंट नो, गुजरात भी निगाह हुआ से कोई तो. फ्यू डेज बैक आई हर्ड इट वॉज वेरी हॉट इन गुजरात, बट इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ रिलीव ना अकूस. एनी वेज, यू टेक केयर, ओके, वेर एवर यू आर अकूस. आई होप यू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डे अहेड. एंड येस माई डियर फ्रेंड्स, दोस्ती की बात हो और म्यूजिक साथ ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कतई हो ही नहीं सकता. तो येस, ये अगला गाना आप सभी के नाम जो हमारे दोस्त बनकर हमारे FM परिवार से जुड़ते हैं, और उन सभी दोस्तों के नाम जो हर सिचुएशन में साथ खड़ा रहता है. ऑल राइट, दिस इज योर माई मैट.
1: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

अलविदा दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी को हिमा एफ एम ट्रागोपैन 103 मेगाहर्ट्ज पर वेस्टर्न म्यूजिक आरजे वेरोनिका के साथ। और जी हाँ, लेट्स टर्न अप द एनर्जी अ लिटिल बिट मोर। अगर आप काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या फिर अखूस की तरह बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, या म्यूज़िक को इन्जॉय करने की कोई वजह या कोई सिचुएशन या कोई दिन ही नहीं होता है ना, तो चलिए और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए और थोड़ा हिलने डुलने की थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि दिन भी बहुत ख़राब है, थोड़ा गर्माहा चाहिए, है ना। चलते हैं और सुनते हैं गैसोलिना, दिस इज़ बाय डैडी यांकी, लेट्स गो।

0: वेल जी हाँ माय डियर दोस्तों, खुश रहने के लिए ना टैक्स लगता है, ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है। जस्ट एक प्यारा सा मुस्कुराहट, एक साफ दिल, बस खुश मिजाज हो जाएंगे हमारा दिन, है ना। तो यस, कभी कभी एक अच्छा गाना, एक प्यारी सी मुस्कान और एक सुकून भरा पल ही काफ़ी होता है खुश रहने के लिए। तो यस, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और म्यूज़िक का मज़ा लीजिए।
1: D50.

Oh yes, that was Commando by Mavokali. और अब वक्त है एक ऐसा ग्लोबल हिट का जिसने दुनिया भर के प्लेलिस्ट पर राज किया था. और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये गाना पता ही होगा. अगर आपको पता है तो बिल्कुल झिझकिए मत, बस गा दीजिए गा दीजिए. बस रास्ते पे हो, गाड़ी पे हो, कहीं पे भी हो, बस जोर जोर से गा दीजिए. क्या है, क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे बस हमें पागल ही समझे, पर आप एंजॉय तो करें सही, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, लाइफ को थोड़ा सा हल्का भी ले लो यार कभी तो. और यस, यहाँ पर एक मेरा फेवरेट गाना है, ये हमेशा से मैं सुनती आ रही हूँ पर अभी तक भी मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आएगा ये गाना, क्योंकि आप लोगों को भी ये पता ही है. मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी इस गाने को, बस चलते हैं और सुनते हैं.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: সব সরকার হেলথ সেন্টারসে বিপি লাগা ফ্রি চেক আপ ট্রিটমেন্ট আর কাউ ভাল থাকিব লাগা মতব দি আছে বিপি লাগা কোনবা সওয়াল থাকিলে টোল ফ্রি নাম্বার 1800 116 6660 কল করবি বিপি হারিব দেশ জিতিব
1: কিছু জানকারী NTEP বার দি আছে
2: জয় হিন্দ পিছলে এক দশক মে আপনে এক বদলাব নোটিস কিয়া अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड वी हैव द फर्स्ट कॉलर विद अस। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार दुर्गेश जी, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया है। और बताइए आज का मौसम कैसा है गंदुआ मध्य प्रदेश में?
2: सर आज का मौसम तो एकदम सुहाना हो चुका है और धूप भी कमी है, धूप छाव हो रही है।
1: अच्छा ठीक है, तो
2: लग रहा है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है।
1: अच्छा तो मतलब गर्मी तो रहता है ना? मतलब
2: सर जी उमस जैसी तो गर्मी तो है अभी दिन में भी पंखे कूलर चलाना पड़ता है, हवा के बिना तो नहीं रह पाते ना।
1: अच्छा ठीक है, तो पता ही आज और कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा आप?
2: सर आज फिल्म अमर अकबर एंथोनी का गाना पर्दा है पर्दा वो वाली।
1: ओके, और क्यों ये वाला गीत?
2: सर आज अब मेरा फोन लग गया है थोड़ी स्टार्टिंग में, तो ये कवाली से थोड़ा कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए।
1: जी, और ये कवाली मेरा एक फेवरेट है। और
2: आप बजाते हो कार्यक्रम में, मैं सुनता हूँ
1: जी।
2: एक बार कवाली का कार्यक्रम में आपने बजाया था?
1: जी जी, मेरा फेवरेट है ये। और बताइए किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
2: सर सबसे पहले मेरे फैमिली के लिए पापा राधेश्याम नागमपुरे सर जी, उनकी तबीयत अब थोड़ी खराब है, मतलब वो चल फिर भी नहीं होती वो पाती उनसे।
1: अच्छा।
2: और जी सर वो क्योंकि बहुत अच्छे एक टीवी रेडियो मैकेनिक थे, वो अच्छे कलाकार थे, पर अब उनकी तबीयत खराब होने के कारण मतलब अच्छा नहीं लगता हमको।
1: अच्छा,
2: वो घर में चल फिर नहीं हो पाती, चलना फिरना जैसे।
1: अच्छा, पापा का उम्र कितना है?
2: सर उनकी उम्र है 50 साल।
1: 50?
2: पापा की।
1: हाँ 50 years। अच्छा अच्छा ठीक है, तो थैंक यू सो मच दुर्गेश जी, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा। और पापा के लिए गेट वेल सून विश देता है और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमी खन्ना का रेगुलर लिस्नर, रेगुलर टेक्स्टर एंड रेगुलर कॉलर एक तो ठीक है दुर्गेश नागनपुरी गंदवा मध्य प्रदेश पर और ताई अजी ताई लगा माने ताई लगा पापा लगा ऊपर भी अमी खन ताई कथा कुआ होनी चाहिए कि ताई पापा उन्हों खाओ ठीक ना है कोई ना, अमी खन सभी प्रार्थना दी रखी देगी और ताई रिक्वेस्ट को लगा गीत अमी खन पहला हुनी हबो अमर अकबर एंथोनी फिल्म रा सुनो निकम गुआ गीत और खारस म्यूजिक दिस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लिरिक्स आनंद बक्सी एक तो बेसि भल कवाली थकी आज शुनी एन्जॉय करी माय डियर फ्रेंड्स।

0: Well, my dear friends, next caller, Michal Nagore Thakye Ase. Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is calling?
1: Hello, Namaskar.
0: Namaskar.
1: Namaskar, I am Premoji Chakravarti, Kotakuya Ase.
0: Okay, Premoji. Okay, Premoji Chakravarti, program ni swagat kuri ase. Aroko, aji kundu geet
1: ho. Aapko bahut bahut dhanyawad sir, aapko bahut bahut dhanyawad.
0: Thank you.
1: पहले बोलिए आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है, और आप कैसे हैं?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, अभी तो मैं बाहर है, मैं काम में आया।
0: काम में आया,
1: और
0: क्या,
1: मैं
0: क्या काम करता है आप?
1: मैं पूजा पाठ करने के लिए।
0: क्या वो क्या
1: काम कर रहा? पूजा पाठ।
0: पूजा पाठ।
1: मैं तो बंगाली कुलिया से मेरा जन्म हुआ, इसलिए तो पूजा पाठ मेरा पैसा है सर।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है।
1: पूजा पाठ मेरा पैसा है, और पूजा करके करके मैं रेडियो कार्यक्रम सुना है,
0: क्या
1: और अभी डायल कर रहा हूँ और मेरा फोन लग गया,
0: क्या
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ, आज का किस्मत
1: तो साथ बात करते तो बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, मैं भी बहुत अच्छा लगा।
1: मैं दिन से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ, और पता है आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: अजय गीत सुनी हो, नाम से

0: ৱেল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এখন লগতে নেক্সট কলাৰ থাকি আছে। হেল্ল'
1: হেল্ল'
0: হেল্ল' হু ইজ কলিং?
1: নমস্কাৰ
0: নমস্কাৰ, কোন বোল ৰা হে?
1: গ্ৰাম হীৰাপুৰ জিলা সিহোৰ মধ্য প্ৰদেশ ছে ভগৱান সিং পৰমাৰ বোল ৰা হো ছাৰ।
0: ओके, भगवान सिंह वर्मा, प्रोग्राम में स्वागत है। और बताइए आज कैसे दिन रहा?
1: जी सर, पहले फिल्म का नाम बता देता हूँ। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन और गाने के बोले गोरी है कलाइयां।
0: आज का अर्जुन?
1: जी
0: ठीक है, आज का अर्जुन मैं ढूंढ रहा हूँ। आज का अर्जुन और सॉन्ग टाइटल क्या क्या था?
1: गोरी है कलाइयां।
0: ओके ओके, और बताइए आज का दिन कैसा रहा?
1: दिन बहुत अच्छा है सर। अभी तो यहाँ सीहोर आया हूँ गाड़ी सर्विसिंग करवाने, और मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, पानी भी गिर गया है, ठंडा मौसम हो गया हमारे इधर सर।
0: ओके, और क्यों ये सॉन्ग चुना है आप, कुछ खास बात है?
1: जी सर, अच्छा लगता है सॉन्ग हमको, अमिताभ बच्चन जी का गाना है, बहुत बढ़िया लगता है।
0: ओके, और इतना लंबा सॉन्ग है राइट?
1: छोटा सा चला दीजिए, तीन मिनट का।
0: ठीक है ठीक है,
1: और को डेलीकेट करना चाहेंगे सर।
0: ओके प्लीज,
1: पहले तो आपको डेलीकेट रहेगा। महाराष्ट्र से हमारी छोटी सी बिटिया तन्नू श्री है, और रमेश पात्रे, अमल बेमल भस्मचारी है, और भाईकर मुंडा जी, अंजलि भस्मचारी है, और केसे सिंह राजपूत जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सुनील झा जी है, हेलो फरमाइश एकता रेडियो सभी सदस्य है, त्रिपुरा से बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी है, और पूनम

0: ये कानपुर से और राकेश जी शिमला से, पूरन वर्मा जी राजस्थान से, गोल्डी भाई है हमारे विदिशा से, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
1: ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात हुआ बहुत अच्छा लगा पूरन सिंह जी,
0: धन्यवाद सर।
1: ओके धन्यवाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का अर्जुन फिल्म रदिये से लता मंगेशकर और शबीर कुमार अवस्थे म्यूजिक दिस पापी लहरी लिरिक्स अंजन और कुआ निचना तर नाम लॉस सबके यू गीत डेडिकेट कर दिए से, शुनी के ना एन्जॉय करी माय डियर फ्रेंड्स।

0: FM 103 MHz.
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, अपने कंस ऑफ बीटियो नीन ग्रीन आज आकाशवाणी को ही माई FM ट्रगबान 103 मेगाहर्ट्ज दे अपनी खला का होस्ट और दोस्त अर्जितम जिन लोगों दे। वेल माय डियर फ्रेंड्स, इतिया बड़ा अपनी कन लगातार एक तो प्लेलिस्ट होनी हो और यहाँ आनी दिए से पहला गीत दिल फिल्म रा अनुरोध बुरबल और उदित नारायण आवाज थे, म्यूजिक दिसे आनंद मिलिंद, लिरिक्स समीर। यू बीच अपनी खान दिल लगा फिल्म रहा है हुनी अब दिल वाले और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म कान ब्रा हुनी कि ना एंजॉय करूँगी माई डियर फ्रेंड्स।

0: G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें

बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 और मैं हूं ज्योतिका। स्वागत है आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ड्रग एडिक्शन प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उसका ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, जो नशा मुक्त भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहते हैं नशा सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका असर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, समय पर पहचान और उचित इलाज के जरिए इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन और विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, रेनबो हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, बिफोर वी स्टार्ट द शो, बिफोर वी बिगिन द शो, अगर हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहें कि ये एडिक्शन क्या होता है, नशा किस तरीके का होता है, क्या हर तरह का नशा एक एडिक्शन माना जाता है?
1: देखिए, एडिक्शन मतलब नशा, और नशा मीन्स आदत, आदत पड़ जाए। और ड्रग बोलते हैं, ड्रग जरूरी नहीं है, ड्रग वो किसी भी चीज़ के हम आदत पड़ जाए और उसको हम छोड़ना चाहें तो छोड़ नहीं पाए, और उसको छोड़ें तो उसके विपरीत इफेक्ट एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाए, तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। अब ड्रग इसलिए किया गया है कि इसमें ड्रग्स भी होती हैं, नॉन ड्रग्स भी होती हैं। नॉन ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है। ड्रग्स जो हमारे मेन है वो है मॉर्फिन, पैरास्टामोल, फोर्टविन के लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रग कोडीन के इफेक्ट हो जाते हैं, कोई बार पेन किलर के ही एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन नशा जो चीज़ है, जो हानिकारक चीज़ें हैं, सबसे पहली लोगों को एडिक्शन है, सबसे कॉमन इंडिया में मैं बात करूं तो तंबाकू का
0: जी,
1: और उससे बहुत ज़्यादा टंग कैंसर वगैरह सबसे ज़्यादा उससे होते हैं। सेकेंड इज एल्कोहल, एल्कोहल मैं सेकेंड बोलूँगा आपको, क्योंकि कई स्टेट में तंबाकू इतना ज़्यादा है, लगता लोगों को कि एल्कोहल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हमारी हीरोइन, कोकेन, LSD और गांव के अंदर भांग का नशा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेन इज ड्रग एडिक्शन विद हम कंसर्न करेंगे जो कोकेन, हीरोइन, चरस, गांजा जो सबसे ज़्यादा है, ये शहरों में ज़्यादा है।
0: मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का कोई ड्रग होता है जिसकी एडिक्शन हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ यहाँ रेनबो हेल्पलाइन पर।

0: आशियां तब बनता है जब आप खुश होते हैं, हेल्दी होते हैं। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन एंड विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे पहचाना जा सकता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं ट्रीटमेंट क्या रह सकता है, रिकवरी कैसे हो सकती है। और इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि नशा या ड्रग एडिक्शन असल में होता क्या है, मतलब क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत ही मानी जाती है या ये एक मेडिकल कंडीशन है?
1: ये एक मेडिकल कंडीशन है और बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसको लेते टाइम पता नहीं लगता, लेकिन ये ब्रेन पे इफेक्ट करती है सबसे पहले, और उसका बॉडी पे इफेक्ट करती है, एंड सोशल थ्री पार्ट पे अफेक्ट करती है। बॉडी पे सबसे ज़्यादा ब्रेन पे करती है, जो ट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन हमारा, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो शुरू में तो बड़ा एलिवेटेड मूड लगता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है, उसको कंसंट्रेशन पावर ख़त्म हो जाती है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है, और हाथों में कपकपी आने लग जाती है, बिल्कुल एक कर कोने में पड़ा रहता है, किसी बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, वे बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, और बहुत सारी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, लीवर ख़राब हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं।
0: तो इस तरीके से अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या ये मतलब कोई भी ड्रग अडिक्ट बन सकता है, या देर इज़ अ स्पेशल क्या कहते हैं सर्कल, आपका जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, आपकी संगत जिसे कहते हैं, क्या ये प्रभावित करती है ये कंडीशंस?
1: देखिए, हमारी कंट्री में ना यूथ को ज़्यादा है, और इसका रीज़न है, दो रीज़न है इसको। एक तो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारी कंट्री में ईजी एसेसिबिलिटी, इतना ईजी है, हर पान की दुकान पे आपको तम्बाकू तो मिल ही जाएगा, ड्रग्स मिल जाएगी, हर कोने में मिल जाती है। किसी कंट्री में आप इतना 1 ग्राम 1 मिलीग्राम लेके एंटर भी नहीं कर सकते हैं, इतने सीवियर पनिशमेंट हैं। तो हमारे यहाँ कोई पनिशमेंट नाम की चीज़ नहीं है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है। रोज़ हम देखते हैं एयरपोर्ट पर इतनी ड्रग पकड़ी गई, इतने किलो पकड़ी गई, तो इससे ईजी एसेसिबिलिटी।

0: उसी कंडीशन जो उसको सर्किल मिला, फ्रेंड सर्किल मिलता जो लोग उसमें होते हैं कि इसको, और वो इनोसेंटली उसमें घुस जाता है और फिर उससे बाहर बाहर नहीं आ पाता. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेस. नाउ लोनलीनेस फीलिंग, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और जॉब छूट गया, एक टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है. लोग वो स्ट्रेस को, वीक पर्सनैलिटी होती है थोड़ी, हेरिडिटरी भी हम कहेंगे, जो जो रोज रोज की स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाए, बोल्ड नहीं
1: क्या
0: होते.
1: क्या मैं ये समझना चाहूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि जो डिप्रेशन है या वो अकेलापन जो है वो हेरिडिटरी रहता है?
0: हेरिडिटी भी हो सकता है क्योंकि उसको अकेलापन में है और वो डिप्रेशन बहुत जल्दी, कोई जॉब छूट गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया, उस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाता, वो ड्रग का सहारा ले लेता है, एल्कोहल का या इसका. लोग उसको फ्रेंड सर्किल और उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ये ले लो तो तुम अपना दुख भूल जाओगे, तो इसलिए इस इंटेंशन से लोग ज़्यादा घुस जाते हैं.
1: वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि
0: वल्नरेबिलिटी,
1: जो ये सर्कल है वो उस शख्स को ढूंढते हैं जो आसानी से उनकी बातों में आ सके. और पेरेंट्स को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे किस संगत में उठ बैठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्या वो अकेला महसूस कर रहे हैं. कोई परेशानी है तो उसमें आपको ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए. लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके पास, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए. 9868107070 पर आप अपना सवाल हमारे साथ यहां शेयर कर सकते हैं. हम आपका इंतजार कर रहे हैं.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन एंड विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। अभी हमने बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब से ली कि क्या होता है ड्रग एडिक्शन, किस तरीके के ड्रग्स होते हैं और कितनी आसानी से आजकल मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें अभी फ़िलहाल मैसेज किया है राधेश्याम गुप्ता जी गाज़ियाबाद से, ये बहुत ही छोटा सवाल है इनका, पूछते हैं कि क्या ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में मिलती हैं, आपको कैफेज़ में भी मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में भी मिलती हैं, आप हाईवेज़ पर निकल जाएँ तो आपको भरपूर मात्रा में मिलती हैं कि आपको जगाए रखें, क्या ये हानिकारक होती हैं?
1: ये बहुत हानिकारक होती है, स्पेशली स्टिंग सबसे ज़्यादा फेमस है बच्चों में। वो कहते हैं कि इसको पढ़ाई करने से नींद नहीं आती है, फ्रेशनेस रहती है, इसमें हाई लेवल ऑफ कैफीन होता है और इसमें जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स से मिले होते हैं, तो इसको बहुत कम लेनी चाहिए।
0: और उसके बाद हमें ये सवाल भेजा है सादर जी वेस्ट बंगाल से, पूछते हैं कि मैं अल्कोहल 6 से 8 ग्लासेस रोज लेता हूँ, इसको छोड़ने का क्या कोई दवाई है? मैं दिन में नहीं लेता लेकिन मैं रोज रात को लेता हूँ।
1: देखिए, इसको छोड़ने के लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप खुद कह रहे हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप उसको ग्रेजुअली छोड़िए। 7 से 5 पे आइए, 4 पे आइए, 3 पे आइए, मेडिकली परमिटेड 6 पैक्स अ वीक, 30 ml ले सकते हैं, वो भी हफ्ते में 6 दिन। इस पर अगर आप आ जाएंगे, क्योंकि जितनी हायर क्वांटिटी लेंगे मोस्ट डेंजरस इज लीवर के ऊपर, और एक बार लीवर फेलियर हो गया तो वो वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। जो अभी आपका हाल है उसमें अभी रिवर्ट वापस, जैसे ही अगर आप छोड़ देंगे आपका लीवर विदिन 6 मंथ नॉर्मल आ जाएगा और लीवर फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप जितनी कम से कम मात्रा में लीजिए और साइकेट्रिस्ट का सहारा लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, कुछ मेडिसिंस भी देंगे जिससे रात को नींद आ जाए।
0: और अगला सवाल, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इनका भी बहुत ही छोटा सा सवाल है कि मैं साल में 3 या 4 बार ही अल्कोहल का सेवन करता हूं और इसके अलावा कोई और तरीके का नशा नहीं करता, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा मुझ पर?
1: अगर साल में 3 या 4 बार लेते हैं, हम उसको ऑकेशनल अल्कोहलिक कहते हैं, उसको अल्कोहलिक नहीं कहते हैं, तो वो आप ड्रग एडिक्शन में नहीं आएगा, पर 4 से 5 मत कीजिए बस आप।
0: और सिंस हम इस सब के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। इस अभियान का जो मकसद है, उद्देश्य, लोगों खासकर युवाओं को नशा और नशे की हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना, समय पर पहचान को बढ़ावा देना और जरूरतमंद लोगों को काउंसलिंग, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से जोड़ना है। अगर आप या आपका कोई भी परिचित नशे की समस्या से जूझ रहा है तो मदद लेना बहुत आसान है। भारत सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नेशनल ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन टोल फ्री हेल्पलाइन 1-444-6 पर 24/7 संपर्क किया जा सकता है। इट्स 1-444-6। यहाँ ट्रेन्ड काउंसलर्स द्वारा टेली काउंसलिंग दी जाती है और जरूरत पड़ने पर नजदीकी डी एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सेंटर की जानकारी भी दी जाती है। तो अगर आप खुद की मदद करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बस आप अपने दिल की सुनिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका

0: बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
1: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल आर्ट ब्रेक. आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन विद मी ज्योतिका, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, एमडी मेडिसिन और विजिटिंग कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल. हम बात कर रहे हैं आज ड्रग एडिक्शन के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे आप इस सर्कल से अगर निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ रहा हो तो शुरुआती सिम्टम्स या वार्निंग साइंस क्या होते हैं, मतलब जिन्हें फैमिली मेंबर्स पहचानना चाहें.
1: देखिए, कोई यंग है और अगर उसको ड्रग एडिक्शन हुआ स्टार्टिंग में, तो अगर वो बहुत ही एक्टिव है तो सडनली वो एकदम बिल्कुल लेजी दिखेगा और उसका फैमिली से इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है. बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, एक किताब लिए पढ़ रहेगा, और उसके लाइफ में उत्साह खत्म हो जाता है. फिर धीरे धीरे बहुत सोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा, चलने में उसकी चाल बिल्कुल ढीली हो जाएगी, हाथों में ट्रेमर्स आने लग जाएंगे. तो ये सिम्टम्स तो बहुत है. बॉडी में फीवर हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा. फिर बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और वो इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं तो HIV और हेपेटाइटिस बी, ये बहुत कॉमन है ड्रग एडिक्स में.
0: अगर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम बच्चों को हमेशा सेफ रखें, एक सेफ एनवायरनमेंट दें, लेकिन आजकल की दुनिया में आप 24/7 तो किसी पर नज़र नहीं रख सकते. वो क्या ऐसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाना चाहें इस बारे में, खुलकर बात करना चाहें, तो किस तरीके से करा जाए? क्या उन्हें डांटा जाए, धमकाया जाए, या क्या अगर कोई इसका सेवन करता है तो वो अपने दोस्तों का भी सहारा ले सकते हैं?
1: देखिए, ये एक बीमारी है, एडिक्शन उसकी प्रॉब्लम नहीं है. वो अपने आप नहीं फंसा है, धीरे धीरे उससे इन्वॉल्व हो गया. अब वो उससे बाहर निकलना भी चाह गया, हर जना चाहता है बाहर निकलना. तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है, खाली पेरेंट्स की नहीं है, उसके दोस्तों की, फैमिली मेंबर्स की, कि वो इसको रीअश्योर करें. वो वैसे ही डिप्रेशन में होता है, उसको और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए, वो साइकोलॉजिकल थेरेपी देता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी समझाता है, उसके साइड इफेक्ट बताते हैं, और उसको एक अकेला नहीं छोड़ें कभी भी, उसको डाइवर्ट रखें, उसको बिजी रखें. जरूरी नहीं है वो पढ़ाई करे, अखबार पढ़े, टीवी देखे, कुछ भी करे, लेकिन वो खाली नहीं रहे और बिजी रहे, और उसको अकेला कभी नहीं छोड़े.
0: अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आप अपने दोस्त के लिए चिंतित हैं, या आपके कोई फैमिली मेंबर है, आपका नेबर भी हो सकता है, अगर आप किसी के बारे में भी कुछ भी जानना चाहें, डॉक्टर साहब आपका आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे. 9868107070 इज द नंबर. आप अपना मैसेज हमें जरूर भेजिए, एंड वी विल श्योरली टॉक अबाउट इट. आगे हम और भी बातें करेंगे डॉक्टर साहब से. स्टे ट्यून्ड विद अस राइट हियर.

0: हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में, और इतने सारे सवालों के बीच एक और सवाल हमारे बीच आया है जो आपने नाम नहीं लिखा है, अगर आप नाम लिखते तो अच्छा लगता, लेकिन शी वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। कहती हैं कि वो गोल्डन एक च्यूबल टोबैको है जो बहुत सालों से वो कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके चलते उनके दांत भी गिर चुके हैं और उन्होंने अभी टीथ एक्सट्रैक्शन करवाया है, नए डेंचर्स भी लगवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गोल्डन नाम की इस चीज को च्यू करना चाहते हैं, तो क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे मदद ली जा सके?
1: देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अल्कोहल से भी खतरनाक सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है, तो सबसे कॉमन टबैको, और टबैको का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो ओरल कैंसर, टंग कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए हैं, और वो टोटली उन्हीं को हो रहे हैं जो टोटल टबैको एडिक्ट हैं। अल्कोहल से इतने नहीं हो रहे जितना कि टबैको से हो रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि खाली डेंचर हो गया तो डेंचर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह खुलता नहीं है पूरा, चबा नहीं पाता है, ये कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा टबैको लेने की। और उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास है निकोटिन च्युइंगम आती है, सिप्ला कंपनी की और भी आती है, वो तो लेनी होती है, उसको चबाओ तो इसको आप इतने सालों से अगर उनके फादर खा रहे हैं तो एकदम नहीं छोड़ पाएंगे, तो उसका नंबर ऑफ टाइम जितने ले रहे हैं, 10 बार ले रहे हैं तो 5 बार करें, 4 बार करें, तो वो जो च्युइंगम मुंह में रखते हैं तो उसका इफेक्ट जितनी देर रहता है तो उसकी फीलिंग नहीं होती जो एडिक्शन की, वो लें और धीरे धीरे इसको छुड़ाएं, या एकदम तो नहीं छूट पाएगा लेकिन जितना हो सकेगा, और थोड़ा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी वो थोड़ा साइकोथेरेपी भी देंगे उनको, और आप लोग सब भी मदद कीजिए, लाइटर फॉर्म ऑफ तम्बाकू ले लीजिए जिसमें थोड़ा हो, और निकोटिन च्युइंगम आती है आजकल मार्केट में जो मुंह में वो रख लें च्युइंगम तो वो टेस्ट तम्बाकू जैसा रहता है, तो वो टबैको की फीलिंग नहीं आती लेने की।
0: ओके, कहा जाता है डॉक्टर साहब कि ये जो निकोटिन च्युइंगम होता है जो रिप्लेसमेंट होता है सुधार करने के लिए, इसको धीरे धीरे चबाना चाहिए, और मुंह में हल्की जब झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन हो तो उसको अपने दांतों के बीच में इसको पार्क कर दें, उसके दोबारा जब वो सेंसेशन खत्म हो जाए दोबारा से उसको च्यू करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल इसका तरीका यही है जो आप बता रही हैं।
0: तो अगर आप अपने फादर को हेल्प करना चाहें तो ये जरिया बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इसकी तरफ बढ़ सकती हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप जानना चाहें कुछ, तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, नंबर है 9868107070। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो ड्रग एडिक्शन है, क्या पूरी तरह इसका इलाज मुमकिन होता है, या ट्रीटमेंट आमतौर पर कितना समय लग जाता है अगर कोई दिल से नशा मुक्त होना चाहे?
1: देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, वंस अडिक्ट इज ऑलवेज अडिक्ट, पर उसके जो चैलेंज है बहुत बड़ा हमारे लिए, मेडिकल फैटर्निटी के लिए, और बहुत इजी नहीं है ड्रग छोड़ाना, पर इसमें बहुत लोगों की हेल्प की जरूरत होती है, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। सबसे पहले अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है तो हम उसको एडमिट करते हैं डी एडिक्शन सेंटर में। जब एडमिट करते हैं तो वो जो 24 घंटे 48 घंटे जब वो मेडिसिन नहीं मिलती है तो वो रेस्टलेस हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कुछ खा नहीं पाता, तो उसको आईवी ड्रिप वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स और ये सब देने पड़ते हैं, प्लस साइड साथ में लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, उन पे इफेक्ट तो नहीं है ड्रग का, वो सब देखना पड़ता है, तो 2-3 डेज में वो जाके स्टेबल होता है, फिर हम उसको टैबलेट पे कर देते हैं जो ड्रग डी एडिक्शन की हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको रेगुलर करता है साइकोलॉजिस्ट। कई कई एडिक्शन सेंटर हैं जो 21 डेज, एक एक मंथ, दो दो मंथ तक रखते हैं, 3-3 मंथ तक रखते हैं, अगर 6 मंथ तक अगर उसने नहीं ली एक बार भी तो वो हम उसको डी एडिक्ट कह देते हैं, वो नहीं लेगा। लेकिन आप एक बार डी एडिक्ट हो जाए तो कभी मत सोचिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी, उसकी पर्सनैलिटी, आगे उसको कभी भी जिंदगी में स्ट्रेस होगी, उसका जॉब चला गया या उसको कुछ किसी के घर में लड़ाई हो गई या कोई स्ट्रेस मिला तो फौरन उसका आदि हो सकता है, उसका नज़र बनाए रखनी पड़ती है हमेशा, और 6 मंथ तक अगर वो नहीं लेगा तो 90% लोग वो छोड़ देता है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। आप भी हमारे साथ बने रहिए रेनबो हेल्पलाइन में, आपके जहन में कोई सवाल हो हमें फटाफट व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक।

सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. और मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमें अगला सवाल मिला है डिप्रेशन के बारे में. ये जानना चाहती हैं कि ये सिवियर डिप्रेशन से गुजर रही हैं, 15 से 16 घंटे ये आम तौर पर सोती हैं, इस चीज से निकलना चाहती हैं. हाउ टू एस्केप दिस हार्श रियालिटी?
1: देखिए, स्लीप जो है रिक्वायरमेंट एक पर्सन की 8 आवर्स है, 6 to 8, आइडियल 8 आवर्स. 18 आवर अगर आप सोते हैं, अगर डिप्रेशन में हैं तो आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराइए. डिप्रेशन दो टाइप का होता है, या तो आप रिएक्टिव होता है, जो आपको कारण पता हो तो उस कारण से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको अपने आपका लाइफ को एक्टिव करो, मॉर्निंग में उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, और थोड़ा बाहर निकल के घूम के आइए, थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए दोस्तों से, घर वालों से, और अपने आप को लोनलीनेस फील नहीं कीजिए. प्लस साइकेट्रिस्ट से भी लीजिए, कोई एक आध कोई मेडिसिन हल्की सी दे देंगे, जिससे रात को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हल्की सी लेके. बट 18 आवर्स स्लीप इज नॉट द आंसर, इट कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली.
0: मतलब अगर आप दिल से चाहें तो आप जरूर ये काम,
1: आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप जरूर.
0: जाते जाते शो का टाइम खत्म हो रहा है. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, 9868107070 पर हम आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं.

0: अब धीरे धीरे हमारे जाने का समय हो रहा है और मैं डॉक्टर साहब से जाते जाते आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि हमारे युवा श्रोताओं और उनके माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बना सकें।
1: मैं सबसे ज्यादा युवाओं को आपसे अपील करूंगा, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। एक युवा अगर ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसका करियर खत्म हो जाता है, आगे कोई काम नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल बर्डन है कंट्री के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर और खुद के ऊपर भी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सुसाइडल टेंडेंसी इज इन द यूथ ऑफ ड्रग एडिक्ट, तो उनमें डिप्रेशन आता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो दिस इज अपने आप को खुद को मारना है, तो इससे अपने आप को बचाएं और दोस्तों से दूर रहें, ड्रग एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहें। कोई आपका व्यक्ति अगर ड्रग एडिक्ट आपको लगता है आपका साथी है तो उसके फौरन हेल्प करें, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उसको रीअश्योर करें, उसको ड्रग छुड़ाने में आसानी करें। और ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री की और इसको जितना हो सके, ये सब यूथ के हाथ में है। जितना यूथ में अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा एंड दे मोटिवेट अदर थिंग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हेल्थ बनाने के लिए। फिटनेस पे जा सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, टेक फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल, गुड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रिलीव योर स्ट्रेस विथ योगा। थैंक यू वेरी मच
0: डॉक्टर अशोक शर्मा जी, रेनबो हेल्पलाइन में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे थे रेनबो हेल्पलाइन, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और दिल से दिल तक जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ। घर आशियाना जिसे बनाती हैं हमारी माँ, चाची, बहन, भाभियाँ, संवारती हैं उन्हें, हमारे आशियाने को सजाती हैं और उनकी जो उनका जो प्यार होता है ना, बसा होता है घर के हर एक कोने में और सबका इतना अधिक ध्यान रखती है जैसे कोई जादू की छड़ी हो उनके पास। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है जब कोई किसी लंबी बीमारी से, गंभीर मानसिक समस्या से हमारे अपने गुजर रहे होते हैं तो किसी अपने की लगातार देखभाल करते हुए वो तन के साथ भावनात्मक रूप से भी बुरी तरह से टूटती चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और अपने खुद का भी ध्यान रखें, इसी बारे में बात होगी आज प्रोग्राम आशियाना में। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

काश कोई समझ पाता, ऐसे विचार तो आते ही है ना, क्योंकि वो भागती रहती हैं, सबका ध्यान रखती रहती हैं, मशीन की तरह चलती रहती हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर अपनी थकान की तो उन्हें परवाह ही नहीं होती है। और ऐसे में कई बार जो अपने हैं वो गंभीर समस्या से जब गुजर रहे होते हैं तो वो जो थकान है वो पूरी तरह से हावी हो जाती है, और ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। और गुस्सा, बेचैनी, रोना, थकान या परेशान होकर वो बिल्कुल उलझी सी रहती हैं। तो ऐसे में अगर गुस्सा आए या बेचैनी हो, रोना आए, थकान हो या परेशान हो जाना कोई कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक मानवीय स्वभाव है, और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक मानवीय स्वभाव है, अपने अपनों की देखभाल ठीक ढंग से ना कर पाने का जो अपराध बोध होता है ना, या कई बार हमें लगता है कि कहीं दूसरे हमें गलत ना समझ जाएं, तो इन सब चीज़ों की परवाह ना करके कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना भी सही है, तभी सुकून मिलता है और बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
8: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
9: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
10: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
11: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।

दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी लंबी बीमारी से हमारे अपने गुजर रहे होते हैं या गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो उनकी देखभाल करते हुए जो घर की महिलाएं होती हैं वो अक्सर बहुत थक जाती हैं और वो अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनका जो सेहत है वो किस तरह से बिगड़ता जा रहा है या फिर वो भावनात्मक रूप से टूटती चली जा रही हैं। तो ऐसे में अपनी शरीर की बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा जो शरीर है वो तनाव को बहुत जल्दी दर्ज कर लेता है और जब आप बोझिल महसूस करें तो बहुत सारे टेक्निक्स का सहारा लिया जा सकता है। अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखें, जैसे शांत संगीत सुने, पसंदीदा एल्बम देखें, फोटोज़ देखें, अच्छा खाएं या फिर अपनी पसंद का कोई भी काम करें। और फिर एफएम रेनबो तो है ना आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: वैसी ही कहानी सुनाए।
1: दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। तन और मन की सेहत के लिए योग अपनाया जाना ही चाहिए।

और आज आरोग्य पथ के तहत हम बात कर रहे हैं शीर्षासन की। शीर्षासन को योग मुद्राओं का राजा माना जाता है। शीर्षासन के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क, आंखों और बालों की सेहत जो है बहुत अच्छी हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही तनाव, चिंता, डिप्रेशन से भी निजात मिल जाती है। शीर्षासन जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष और आसन, जिसका अर्थ होता है सिर के सहारे योग करना। तो शीर्षासन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कठिन योग आसन को हमेशा किसी एक्सपर्ट योग टीचर की देखरेख में ही शुरू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि शीर्षासन की जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं आपके साथ कंचन।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं। और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
4: साथियों नमस्कार।
5: नमस्कार साथियों।
4: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
4: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
5: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
4: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
7: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
6: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
7: यस।
5: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से

0: लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी,

0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जोंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू? हाँ जोंसी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जोंसी।
3: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जोंसी, मैंने देखा।
3: देखो अब वो वहीं पर है, अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जोंसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जोंसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
2: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जोंसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जोंसी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।
3: थैंक यू
4: जोंसी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
4: हाँ वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
4: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
3: ओ गॉड,
4: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जोंसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
4: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
4: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जोंसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
4: जोंसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
4: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
4: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
4: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
4: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
4: हाँ जोंसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी

0: मास्टरपीस बनाऊंगा। और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सो बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सो
1: हाँ
0: मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: সব সরকার হেলথ সেন্টারসে বিপি লাগা ফ্রি চেক আপ ট্রিটমেন্ট আর কাউ ভাল থাকবা মদব দি আছে। বিপি লাগা কোনবা সওয়াল থাকিলে টোল ফ্রি নম্বর 1800 116666 কল করবি।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत।

0: ने हुईले इतिया लगा मौसम दे नक्सन बे बेसी ब्रा पुंछे लुई थाके इतु कारणे आमकन कावरी पाली थाका किसान कान ब्रा हुईले भी बायो सिक्योरिटी सपा सपी तारीका खान बेसी जलावले लगे आसे पाली थाका खोर दे होताई निस्ना ब्रा डिस इन्फेक्ट कुरी किना दवाई बिलाक ब्रा सपा कुरी दी थाकी बोले लगे थाना दिया थाली पानी दिया थाली खान भी सपा कुरी किना इतु सपा नियम चलाई किना राखी बोले लगे आसे आरो होटेल ब्रा ओलाई थाका खा लुआ खान इतु खान दो एनी आने किना गहरी खान के इतिया लगा मौसम दे होले नाटी बोले लगे आसे ना होले बा खोर बा ओलाई थाका खा लुआ खान इतु खान भी ठीक ब्रा ना पकाई किना ना खेला बोले लगे आसे आरो गहरी खोर दे जा लगा इतु फुटपाथ्स इतु खान भी अमाखान सफा कुरी किना राखी बोले लगे आको हेल्थी ब्रा थाका बीमार ना लगे किना थका गौरी खान इतु खान सब तो हेले इतिया बरा क्लासिकल स्वाइन फीवर लगा वैक्सीन इतु खान तो लोगना दिबले लगे आसे पोल्ट्री स्पेसिफिक एडवाइजरी दिबी कुआ दो हेले इतिया लगा मौसम दे कोक्सीटायोसिस बीमारी खान मौसम गरम हुआ एक लोगों पोर्कन पानी बेसी बा पुरिया इनका समय दे मुर्गी खान के लगे थके इतु कारण रेनिकेट लगा आरो इतु कोक्सीटायोसिस खान लगा वैक्सीन खान तो साइगिना मुर्गी जिरिया बिला खान की भी दी जाए थकी बोले लगे आरो पाली थका खोर खान होले भी इतु खान सब तो सपा दारी का नियम जलाईगिना मुर्गी जिरिया खान की भी पाली बोले लगे आसे इनका मोन डिस्ट्रिक्ट का उन्हें एक्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन पुराई दिया आसे आज निमित्ते इमानुदे शेष कर आसे अहा कल एक समय किसीम किसमान खजा लगना आगो लग पा हब
1: WFM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz

उन्हें ठगा सब बिल्ला क्रेश फिल्म की गीत लगते हे अपनी पसंद गाना एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज पर यात प्रोसेस करी दिया से याते अपना खाना मैसेजेस और भी बीसी बीसी से सब लगा मैसेजेस खान मोई लोबो ना पड़े होली भी अपना खान मन दुखी न हो भी आहिया काली भी लाइव फोन इन प्रोग्राम भी आहिबो और एसएमएस रिक्वेस्ट लगा शो भी आको आहिबो से एटू समय ते आको लकुरा हबो उन्हें ठगा सब बिल्ला खबर इतना অলপ পাছত সময় 7:10 মিনিট।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस

0: के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार डेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।